आज हुकुम सामर जी से बातचीत हो रही थी कि फोक का क्या है और संगीत ने अपना रास्ता अलग बनाया, वो दोनों पेश करो। रे रे रे ने ये तो संगीत फोक का। रे रे रे ना रे ना

0: तो उन्होंने
1: अब ये भक्ति भंग करने के लिए वो जो बुलाए हैं वो उसकी भक्ति भंग करना चाहती है, तो इसलिए गमक के यहाँ आती है।
0: तो उन्होंने
1: ये अपने ध्यान लगाए नारंग के बैठे और ये भयानक शक्लें जो हैं वो उसको डिस्टर्ब करना चाहते, काम क्रोध अहंकार लोग जो भी कुछ समझिए,